ब्रायोधायुन धेने मीने का तिलहने इशाल्ला होकना ऐसे गन हमसे बकुएं बाली बनी आदमत दातुआना सनी तू न थो हदी दाने आदे थन अरे अल्लाह अफवाह न होन सीसा गनुन वेदिस ऐदने उधर गई लवी आबू उत्तो बेड़ावे उधायुन सु और हमारा गायो हीनो बेने मीनान बाउले हुआ बखाला हुआ हीनो दाई थायाती बहीन माशाल्लाह नुन दाई तुम्हारे तमीन नस मीनन नस देवाती बहीन दिमाग न फी हुआ इतलहा नहीं हुआ उन्ने इतकी कन ऊधे इधा सूर्य बुदामान अकायत एरिब उन्हों मिंदर एयान मिंदरी दबल काव एकेन दा बिंकाने न मागनफित बिंकाने द गई लवतात अम्रात बिंकाने हुआ लहने इत बिंकाने हुआ उधाई विवरणी है उन दा इन हेनन तित्ते न बाते होई कक निसे कक सागे काते न कातीन नया दे ना का दिया नया हेनन हो हदी दा हमसे नया दे उमरत अत्तेला नहीं थो हदी दाने आदे उयदिस एदनेत शालहों संगी होक न संगी उम्बरियो हदी दाने बरु उन उमरत उम्बरु अव्वल लविया नो ना अमीना लविया बे एन अमीना अमरीका लविया मल्ला बारे तुंदिव बे नाती अथरे गया दे या उन हाशिब इब्रार इह अव्वली बरु लविया नो मालो ना बितिक लवा अबू उमरत ना नाते मरद तुंदिएक हेनिन उन अल्लाह सुबहान तआला उन इब्ने आदम इदियै उन तादे तवायनो उत अदेती दासिया नात नन दासिया तिंदेक उत अदेती गुबेव दासिया अलमना एदनेन उत अदेती तेफे गुबे है उन गुबे उम्बरु अल्लाह ना नातिब दासाबु एन फैरूसाव जरासिमु मिक्रोबा वो एदने तेन तिदिबनु इमरादा हा एसेंतेन इंबता एनो बेन उमी बेन ओदोर उन उत अदेती एफे उगुबे इंबरे इमोटे इमोटे आई हिमाया दई दन्ने उन उमारत उम्बरु हेनिन हो हदिदनाए शाला सागे काउकने काती उकना सूर उदे एक तिन्ने न कित्ते इंबते लाकिन ता गई लवता नातु उम्बरु ऐनियो उन जिस्मी उन अदेती जुआ बशरी एफे उन ओगुबे उम्बरु इमोटे आई तुन ओगुबे हश्य दन्ने ओगुबे हश्य दन्ने ओ ओता कम से फिना व मोटा तिंदियो तिनाता गीगे नो तो फनाए शाल मल्लाब का के वारे होगा को बेन ओदोर मदा कप्ते कति आया मदा था आती थरी होक सकीन उत्तो नाती दाए उन उगबे उम्बरो हत्ते दन्नी होगा नो मारा तुम्बरो ताने हरी बेन उगबे हत्ते इनी नो भरी नजला दे इतनी उकन उम्बरो उन्ने दंबीरो शालिक ना उल्ला महत्नी हो शालिक मारा तैनी कुम्बरो लहसेती तो मल्ला ओलहद बाका वेर मीन क्या और इदिये नाती वेज इदने उदर लविया मेल बाकान यादात आदमी येशु आया वीदिये उदसई बहाया दात कित्ते हलक की के तरह ती देख था तो ओजन ओजकुन तिहगलेक थगे लोक लंदा लातो उदहुं तु बिडावी अरे ए नौकना हल्लान नीदे था दी तु तीम सवने तु उन वेदिज इदने उदर लविया नो अव्वल उन उमरत उम्बरु उत अदेती एफे गोगुबे उम्बरु हश्य दन्नी अरे बरु ककते हे ना तो तिंदिये का उम्बरु अव्वल ऐनियो एन इयामे वदैने एयम एला हुआ एयम अदरुआ हुआ इम्बरे इम्बरे सो उराबक ऐने ना था आती तिंदिये बरु ऐनियो को ओगुबा बरु हा ऐनियो उम्बरु उन तुमागनाईती ऐने उमाक्सा की ओचकुन नेदने हुआ उन माक्सक एदने उम्बतो या बहुन सी सदाया अल्लाह सुबहान ताला ओधई अखलगियानो एद अर दिया अबू अर दिया बा एद अर तुदे दिया बे कतीन ते तेन बताओ बे ए इन मियादी उन दा बे कए उन ऊ तक तुमागनाई सकीन ओ बेन ओदोर बे तुमागनाई ती ए एम ए राय व अंबरे हईन शडक तम व सरमा ताको अंबरी सो एन तुमाग माकनाई ती व माक सकती हो तू न तूरा बरो हस्तिनी तुक उत ओबोय ओबोय उन बेन मीना ने मुस्तश्फा हुआ इन मीना ने बरे एदने मुस्तश्फा कतीने केरा वकतीने बोय अमसे वाला तिंदियो ओबोय एद गुइद नबारा बोय अमाग बोय किहीनो एदी जो है बोय किहीनो ओबोय ना गवादी बो तिंदिये उन अमसे मालो नफारा अमोटट्टा गाल ओराव थावे कतीक मनंती तरु बड्डी थावे कतीक बारूक अरे जेरा बेरी उजरुक हुआ उजरा बेन आए हुए अरे उन्हें बेन ओदोर
উবই তৈসই উইবারি নাই উবাবারি বেবে তু রাও না গদি তু ওবই উন মিনি মুস্তশ এবনু হঙ্গুলেন বো এহবেন বারি সোহেন বে ব্রাবাক তু রাবাক ও রাবাক আব গাদা বাকো উমবরু উন্নে গুদাত মাতি কাই কাই তু রাও না না তু এদনে ও তো মুস আমসে বারু মুস্ত ইয়কসা অন মুস্ত ইয়কসা গাল থাথাবে কাতিয়েক এদি জা এতক মুস্ত থাথাবে কাতিয়েক তোমো সুম্বা তো বারুক থাতাত নিয়ে খা এক নি তু নন উন্নে ছা ভাই ওলে তিন দিয়ে কা তুমুস তওয়ালে বারু হল্লান ইস্তখদামো মা বারুক হিয়াও কাতিয়েক ওয়েন ওদোর আতনি নর ওদোর ওরা উন্নে ইয়ানি মিক্রোব উকনা আই দগা কা সগুদ দগা হাওয়া উন জাওই বিনিনে উকনা ইয়া এম তু না তু রাও না না তু তিন দিয়ে তো রাবা কাত তো শক্তি এতনি উম্বা তো ইয়া বহি সিসা গা হোনা তোমাক নাই তোকনা ইয়া বহাবি হোনা সাগে কাতন কাস এন অন ও মারাত উম্বারু ইয়ান উকনা শম্বিবে কা বারু ক্রিবিতি থো ইয়াকি থা আতনিয়ে না তো নুন ইয়ান বারু কুমিনো খা এতনি তোকনা কে উত্তো না তি দা উন উধাই আদ এ আদ আর দা ইবা এ দুর্নে তো না তু হালাল দা ইবু হালাল ইব্রাবা কা বেকাচিনে তো না তু তিতেনা তে মগু তে মাগ নাই ও ইমবতে হই সঙ্গে কেনি হাদা বে সুক কাই অন উধাই তু না তো তু মাগ উম্বারু আমাগ না আমাগ না হই আকি থাত নিয়ে তুনুন রিবিতি থোকে আকতে নি না কিত বে তো না তি দা কস্তে তে না তে মাদা কা তারি তু উয়ায় এদনে তো না বারো তার তিন দিয়ে খঙ্কাই তে তীর তো তারি তু হন মাদা মগনাই তি মাগনাই মাগনাই কা সকতা আয়া মাগনাই তি শালিক কা তে কা তি আয়া উত্তো না তি দা হেনিন এন উধাউন হদ উদাইনেত করে না তো মাগনাই ও মাগনা ফি ও শাল্লাই হগল নোকনা শাল্লা দায়ব দাতে না এনে স্থির রোকনা

वाह, अलग ऊन से कर कमें अमरने पर रखी नगल क्वास कहीं नजे अल ऊन से जमीन दी ऊन से अरे इलोंग न जन्ना लिए हुआ कमें जी वह कमें ये फिलन खास के न फिलन खास के वो ये ऊन ने की ऊन से सी क्यों बेलन से सी क्यों न कान क्यों एलान न कोते मालम को एलान न सजमोतर रही एलान न ऊहे न वो एलान न बेल के किरे नगल अब इन को आलंग उन से आकर संभाल में पिया काओ न पिया आकर सिं न उरों आकर सिं कम गाल से आगे वो नमस्कार रहते बस नमक कमी ये नलंग बस सूर की थी कि दायले उन से सुलोंगा न उन से एलान सुलोंगा न कारण यालंग को न एलान को अब न थर रही एल उन इन दायम वो इनको अब जालंग उन से जो असुमो बुरे अप्पा के लिए जाए कि एला बुरे अप्पा खबर देरिम बुरी मरंग क्या जन न देर को कम्बा देर से कारेल ना मरंग ऊन से जात कुंडी न दो वाल ऊन से बेलंग आखे बा न कोकुल व कहूंगे न पिया कहो पिया नहीं कहो न कहीं पिया पिया अप्पा आगे न लम्बल पिया दुल्ले गए क्वादी सासों डोंगरे खिंदेले ओता यूर संग न कि अकोल वालंग ओता यूर संग से डोंगरे खिंदेल ना अकोल वालंग से सोर से डोंगरे खिंदेल ना अकोल वालंग से उड़ा यूर सकाओ अकोल अलंग करिंग कम इत्रिक अन्याल बुकिंग को कम अलंग ऊन से ऐसे को ना न कि अकोल अलंग ऊन से ऐसे कम कोई जरूर लोक लिया का हुआ ओ नस्कायम बंबगा कंग खिली दो दो आलो जलान जो इन्हें इन्हें लंग आलवस दायम हो पा नमस दीम बंब अप्पू जाइं नस जल न जा खिली ले आना मुझ जो मैं जो का दो आलें को आज इन दुले जिया से जुमो आलवस दो आलें ने कि दुले लोग थे नंद दो आलें ने कि लू लोग थे दुले आला के बा दुले आलों में तोरे का जी आसा जल ने इल उसे आए बा नमस्ते ज्वाला एल ऊसे आला एवं दो अस और दूल्हे से जुमो नद दुआ से देल लो जावे आला के वा दूल्हे से बोके ने दूल्हे ला देते और ने कहीं ने और ही दुआल नंद दुआले मरंजी आलें जमें अस दुआल से अस दूल्हे से जुमो जिकी काजुमो ना ऐसे जुमो ना नान से जुमो ना जिकी जा